0: सच कह जे होंदा।
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच है,
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है,
1: खुरो दी पानी सच है।

0: दे वीजे ली सुपरवीजा इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है।
1: मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
2: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
3: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
4: सुपरवीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
5: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: Nadak Flights offers special business class pricing. Fly business class in comfort. Please call 905-456-9977 to book your flights or WhatsApp 905-456-9977 for a free flight quote. Nadak Flights.
1: मैं नवा कर लिया है, तेनू पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है, एक भाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी, नाले मैं सोचता हूँ वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए, हुन समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कित्थों लईए।
2: हो जी इहदे च समझण वाली केड़ी गल है, सारे कमां लई इक्को जगह, चलो मिसेस अगस्त स्टील ते अप्लायंस जंक्शन ते, इहनां दे प्राइस अते सर्विस नू कोई बीट नहीं कर सकदा, तुसी 6 मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकदे हो, सारे ब्रांड्स दे ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने, मिसेस अगस्त
3: भाई ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
4: ओ इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
5: जी हाँ, जे तुहानू यूज ट्रक दी लोड है तो तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसी इना तो लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई भी याद रखो ईगल ट्रक सेल, 17 स्ट्रेथन एवेन्यू ब्रैम्पटन, कॉल विल सेखो 416-819-6000।
6: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਨ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ ਓਪਨ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 20% ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਨ CRA ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CLB ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ 647-765-2340।
7: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं लक्की भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देख के गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Kataria Tours and Travel.
2: 32, 55, 80.
3: ते 98.
2: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
3: वो काउंटिंग नहीं, ये ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने, जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी, कॉल 905 450 2828, 905 450 2828.

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। अच्छा मत उम्मीद करते हैं कि थोड़ा इधर दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबर न जोड़ के रखिए। अगे चल के वतनों दूर थोड़े लिए पेश किया जाएगा। सुखी निज मनप्रीत जी थोड़े लिए, सॉरी किरण जी थोड़े लिए प्रोग्राम पेश करेंगे और मनप्रीत जी हिंदुस्तान तो खबर थोड़े लिए लेके आएंगे। सूरज सिंह 6:03 ते आया ते 8:44 ते चले जाना। मामा चंद सिंह 9:05 ते शाम नूं आएगा ते 5:52 ते सवेरे जाना। अज दा तापमान 27 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड। कल नूं मोस्टली सूरज चमकदा रहेगा, तापमान 28 डिग्री। फ्राइडे नूं 29 डिग्री तापमान, सारा दिन सूरज चमकेगा। सैटरडे नूं मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड 27 डिग्री। संडे नूं बारिश पैण दे पूरे सार नजर आउंदे ने, बदलवाई रहेगी, तापमान 26 डिग्री। मंडे नूं 27 डिग्री टैंपरेचर होणगे। पेट्रोल दी प्राइस अज 1 सेंट उपर जा रही है अद्धी रातों ते मंडियां दे भाव जिहड़े ने इह तुहाडे लई जनक जुलर दे सहयोग नाल पेश कीते जांदे ने जी। मंडियां दे भाव च अज इह टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, डाओ, नैसडैक ते सोना थल्ले है। डालर ते क्रूड ऑयल जिहड़ा इस समय उपर चल रहा है। नवदीप बेंस लीड कर रहा है फंडिंग दी, जो पैसे कट्ठे करना हुंदा जिहड़ा फंड रेजिंग, काफी ज्यादा कट्ठे कीते हुए उन्हें। जिहड़ी इलेक्शन है वह लड़न तैयार है कि उन्हें लिबरल वनियो अपना लीडर बनना है, ओंटेरियो लिबरल लीडरशिप दे लई। एक गल है, इन्हें आपकी MP की कुर्सी क्यों छड़ी सी, वह बहुत जरूरी है पता करना। क्यों इतने तक कुर्सी बन के बह जाते, कोई छड़ता ही नहीं है, घड़ीस घड़ीस के लाने पैंदे आ। आपकी कुर्सी क्यों छड़ी सी, व्हाट्स द रियल रीजन। ये उवें ही है जिवें हुण तक नीना टांगड़ी अते हरदीप गरेवाल ने ना तो माफी मंगी है, ना कोई टिप्पणी की है। अजे तो उस टाइम चो वधिया सी, वह कहिंदा देखो जी आपां तो हो गई गलती, जिन्ने पैसे मैं खाधे टैक्स पे दे आ चुको। हुण इन्हां ने इत्थे कोई जवाब नहीं दिता, ना इन्हां ने किसे देसी अखबार ने खबर सांझी की है। व्हाट्स गोइंग ऑन मैन, यारी दोस्ती आपकी जगह खबर तो सांझी कर लो। एनीवे जाने आने स्टे ट्यून, बड़ी जल्दी हरप्रीत जी नाल भी गलबात करांगे। पहला चलते हैं टिक्का जंक्शन। टिक्का जंक्शन लई 6474294040 केटरिंग करानी है छोटी वड्डे फंक्शन लई, नो प्रॉब्लम 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम 6474294040। तुसी इन्हां दे बैंकुएट हॉल या लॉज विच छोटी वड्डी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम 6474294040 647-429-4040। मॉर्गेज सोल्यूशन दे गुरप्रीत समरा जी, तुहाडे मकान दी रिन्यूअल आ रही है, तुसी अपनी मॉर्गेज BC लैंडर तो हटा के A लैंडर नाल करवाउणी है और इंटरेस्ट रेट ते भी बचत करनी है। कॉल 905-460-9099। प्री अप्रूवल भी करवा के दिंदे हन तां कि कॉन्फिडेंस नाल मकान लै सकदे हो। 80-90 हज़ार रुपए नूं बनाउण लई चाहीदे ने, मकान लैण वेले इस दा भी अरेंजमेंट कीता जांदा है। गुरप्रीत समरा नाल बैठ के डिस्कस करो। 2155 B स्टील्स एवन्यू नियर टॉप रूम यूनिट 32, 905-460-9099, 905-460-9099, 460-9099 इना दा नंबर है। सजना, रब कोलों मंगना छड़ो, मेहनत करो, रब आपे देवेगा। जिस दिन रब मंगण ते आ गया ना,
1: हां जी मैंने एक गल का जवाब दियो कि जदों बिजली चमकदी है कड़कदी है ते चमक पहला नजर आउंदी ते आवाज बाद च सुनाई दिंदी है, भला क्यों हुंदा इस तरह?
2: क्योंकि मास्टर साहब साडियां अखां अगे ने कन्न पिछे।
1: लावा तेरे कन्ना दे पिछे।
3: फिट्टे मुतेरे। ਪੂਰੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ?
4: ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾ ਚੱਲੀਏ।
3: ਧਰਮ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ?
4: ਗਿੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
5: ਬੇਦਾਗ ਸਰਵਿਸ। ਗਿੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਵਲ,
4: ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ ਤੇ ਬੈਸਟ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਵਲ,
5: ਸਰਵਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ।
4: 905-671-8400 ਔਰ 905-796-8800 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ gilltravels.ca।
6: ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਟੌਪ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। AAA ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਕਾਲ 647-784-1213, 647-784-1213।

0: हेलो एम 5 देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात कर ले हुणे कॉल करो 905-564-6444
0: 9055646444

0: चूहा ते कॉकरोच भी। सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं।
1: हैं? फिर कॉकरोच ते चूहे? वो हाले महीना पहला ते ट्रीटमेंट कराई सी।
0: मैं तेरे पहला ही कहा सी, सस्ते दे चक्कर च ना पो। हुण उपरों बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
1: ओ मैं तां कहना घर ही बेच दिंदे आ।
2: आप घर चो बाहर क्यों जाना? चूहे कॉकरोचां नूं कढो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो। जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000
3: सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स। बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे सवेरे 10 तो शाम 7 बजे तक ऑन डाइन इन एंड टेक आउट। मजा लवो संडे नो पराठा प्लेट, मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट, ट्यूसडे चना भटूरा, वेंसडे लाजवाब वेज थाली, थर्सडे यमी हाका थाली, फ्राइडे मजा लवो साग मक्की दी रोटी दा। ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते। डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग आल्सो अवेलेबल। कॉल एट 9057948111। सिंपली डिलीशियस मतलब सिंपली इंडियन।
4: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगदी है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज? कित्थों आएगी इनकम? किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे? अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ। कॉल करो उमरप्रीत चावला नूं, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा